श्री अलखपुरीशा महादेव की जय। स्वयंभू बाबा श्री देवपुरी जी महादेव की जय। विश्व वंदनीय भगवान श्री दीपनारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी जी श्री माधवानंदपुरी सद्गुरुदेव की जय। विश्व गुरु परमहंस स्वामी जी श्री महेश्वरानंदपुरी सद्गुरुदेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सभी संत ऋषि मुनि महात्माओं की जय। श्री रुद्राष्टकम् नमामि शमीशान निर्वाण रूपम् विभुम् व्यापकम् ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजम् ने

इति श्री गोस्वामी तुलसीदास कृतम श्री रुद्राष्टकम शिवार्पणमस्तु। बोलिए भगवान श्री अलख पुरीषा महादेव की जय। देव पुरीषा महादेव की जय। दीप नारायण भगवान की जय। माधवानंद पुरी सद्गुरुदेव की जय। विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद पुरी सद्गुरुदेव की जय। निर्वाण सटकम

बोलिए भगवान श्री अलखपुरीशा महादेव की जय, श्री दीप नारायण भगवान की जय, श्री देवपुरीशा महादेव की जय, श्री माधवानंद भगवान की जय, विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद पुरी सद्गुरुदेव की जय, आदि गुरु भगवान शंकराचार्य।

देव पुरुषा महादेव की जय, अलक पुरुषा महादेव की जय, माधव कृष्ण भगवान की जय, विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम पूज्य परम योगिराज परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद ब्रज गुरुदेव भगवान की जय।

0: की जय।
1: श्री माधव कृष्ण भगवान की
0: जय।
1: विश्वगुरु महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की
0: जय।
1: आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य जी भगवान की
0: जय।
1: श्री काशी विश्वनाथ भगवान
0: की
1: जय। श्री गजानंद जी भगवान की
0: जय।
1: सब ऋषि मुनि महात्मन की
0: जय। बोलिए भगवान श्री देवेश्वर महादेव की जय।
1: एक और
0: वेद सार शिवस्तवः

देव शंभो महेश त्रिनेत्र शिवाकांत शांत स्मरारे पुरारे त्वदन्यो वरेण्यो नमान्यो न गम्यः।

0: इति श्रीमत्स्यशङ्कराचार्य विरचितं वेदसारशिवस्तव शिवार्पणमस्तु।
1: नारायण
0: भगवान की जय।
1: देव पुरुषा
0: महादेव की जय।
1: अलक पुरुषा
0: महादेव की जय।
1: श्री माधव कृष्ण
0: भगवान की जय।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव
0: भगवान की जय।
1: सत्य सनातन
0: धर्म की जय।
1: ओम नमः
0: पार्वती पतये हर हर महादेव। सम

बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री श्रीदेव पुरी जी महादेव की जय। श्री सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परहंस श्री स्वामी माहेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय। श्री आलकपुरी जी महादेव की जय। सत सनातन धर्म की जय।

0: ओ महाप्रभु जी, यू नो द वेदास, यू नो द वेदास।
1: ओ महाप्रभु जी, ते ज्ञाष वेदी।
0: आप हो भक्त उर्वासी, एंड ऑल द भक्तास आर इन अवर हार्ट।
1: A všichni baktové jsou v našich srdcích.
0: आप हो वेदों के ज्ञाता, आप हो भक्त उर्वासी, आप हो संत नाम के दाता, आप हो सत नाम के दाता, ओ गुरुदेव, यू आर द सत, द ट्रूथ।
1: ओ गुरुदेव, ty jsi pravda.
0: Now, so from that truth name you are the data, o God.
1: Té pravdy ty jsi.
0: Aap ho bhakt urvasi, and you are Gurudev in our heart.
1: A Gurudev jsi v našem srdci.
0: Urvasi is the heart.
1: Urvasi je srdce.
0: Aap ho vedon ke gyata, you are knower of the Vedas.
1: Znáš Vedy.
0: Aap ho bhakt urvasi, aap ho sat naam ke data, and you are the name of the God, everything you are giving us.
1: A jsi jméno Boží a všechno nám dáváš.
0: Sat naam ke data. Sat means the truth.
1: Sat je pravda.
0: Aap ho nij svarup ke gyata, and you are that of the gyata, the knowledge, knower.
1: A jsi znalec.
0: You are the form of the knowledge, gyata.
1: Jsi podobou poznání.
0: Namo, om, namo, prabhu, deep, pranama, brahmananda, urvasi. And about brahmananji, it is om, namo, prabhu, deep, pranam. So, om, prabhuji, prabhuji said, pranam, salutation. Brahmanand urvasi, Brahmanand. There you are residing, O my Dev Puriji, Gurudev.
1: Takže přebýváš tam, můj Dev Puriji, můj Gurudeve.
0: Namo, Om namo, Prabhu Deepaya Vinasi, Apo Brahma, Apahi Vishnu, आप हो कैलाश के वासी, आप हो नारद, आप हो सारद, आप हो शेष सुकरासी, आप हो ध्यानी, आप हो ज्ञानी, आप हो योग प्रकाशी, आप हो देव सब देवी, आप हो सूर्य प्रकाशी, आप हो ब्रह्म विनिर्वाणी, आप हो चहूं आपके वासी, चहूं, इन ऑल डायरेक्शंस यू आर देयर,
1: सी वे všech směrech।
0: आप हो वेदों के ज्ञाता, आप हो भक्त उर्वासी, आप हो सतनाम के दाता, आप हो निज स्वरूप के ज्ञाता, ओम नमो प्रभु दीप प्रणामा, ब्रह्मानंद उर्वासी, सत्य सनातन धर्म की, देवादिदेव अलकपुरी जी महादेव की, देवादिदेव देवेश्वर महादेव की, परम आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। सत्य सनातन धर्म स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, ओम शांति शांति शांति, हरि ओम, हरि ओम।
1: विश्वगुरु परमांशी स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय।

0: दीप नारायण भगवान अलकपुरी समादेव देवपुरी जी महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन भारत माता की जय।
1: विश्व गुरु स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

गीतानि भगवान की जय। श्री विश्वकुंडा शापरम स्वामी महेश्वर जी गुरुदेव की जय।

श्री दीप नारायण भगवान की, श्री श्री देव पुरीशा महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, अलकपुरी जी महादेव की, सत्य सनातन धर्म की जय।

ईश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म उसमें श्री गुरुवे नमः ध्यान मूलम गुरु मुहूर्त पूजा मूलम गुरुपदम मूलम गुरुवाक्यम मूलम ओम शांति परब्रह्म दीपम सर्वे मोहनम्।

सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरंपरां गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात्परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूत

ॐ तत्सत् हरि ॐ तत्सत् हरि ॐ तत्सत् हरि ॐ तत्सत् हरि ॐ तत्सत् जपा कर यही महामंत्र हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। दीप नारायण भगवान की, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की, सदगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, ओम शांति शांति शांति हरि ओम।